एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख देन

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आख देन ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसी ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा।

माता कहती है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया, स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई

पुरातन रीत आप दो मिनट लिए भी श्रवण करो और गुरु अर्जुन देव पातशाह जो अपनी बख्शिश कर रहे हैं पंच ताल दी बराबर दी सवारी दी ये रीत है।

जियो तुम्हारी कृपा ते तुझ पछाणा तुम्हारी ओट तू है मेरा माणा तो बिंदु जा और न कोई था तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब सब्जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई इत उत तुझे पिहाऊ नानके प्रसरा छपदाते नानक के

अपनी कृपा करे। चल कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

आठ पहर हर त्याय के मन इच पुजाई, मन इच पुजाई कर सेवा सेवक प्रण प्रेम।

सप्ताजे मध्यन होत साधु तुरे आवण जानू रे चित पाई जल मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दाई गुरु गुरु सच्चा सिद्धन हार गुरु तुठे सब कुछ पाया जन्मानिक सब बनिहार हर गुण गाओ।

राग माली घोड़ा। राग माली घोड़ा भारतीय संगीत दे अति अलप प्रसिद्ध जा प्रचलित रागां दे वर्ग दा एक कठिन राग है। भारतीय संगीत दे प्राचीन जां मध्यकालीन ग्रंथां इत्थों तक कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंत विच अंकित राग माला विच इस दा जिक्र नहीं आया। एक मत है कि राग मुसलमाना दी काढ़ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच इस राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द, गुरु अर्जन देव जी दे 8 अते भगत नामदेव जी दे 3 शब्द उपलब्ध हैं। माली घोड़ा दा सुभा खुशी उपजाना अते काम क्रोध आदि दी मार तो बचन लई तैयार करना है। परमेश्वर दी दित्ती हर चीज नू वर्तन दा वल आ जावेगा जे नाम दी टेक रखांगे अते खिन खिन राम नाम नू ही नमस्कार करांगे। राग माली घोड़ा दे गौण स्वरूप विच ऋषभ अते धैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका वादी स्वर ऋषभ अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन का चौथा पहर। गुरु अर्जन देव जी दे रचित 2 शब्द, पहला ऐसो सहाई हर को नाम अते राम नाम को नमस्कार गायन कर रहे हैं भाई प्रतिपाल सिंह जी इंदौर वाले अते भाई नरेंद्र सिंह जी। पहला शब्द सर्वन करो, ऐसो सहाई हर को नाम।

दिल दे वेड़े चानना हो सी दूर तिना दे चलना निश्चय करना जेकर संता नाल गंढी में।

एक बारी सारे बोलिए, धन गुरु तेग बहादुर साहब, कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आखिर

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आख देन ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसी ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी सै मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मिलासा, जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे हैं।

तीरथ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज

तप मेरा अंतर जामी जामी तप मेरा अंतर जामी जान तप मेरा अंतर जामी जान तप मेरा

ढगड़ी थेम धृतांग दागड़ी थेम धरना दागड़ी धर्म धृतांग दागड़ी थेम धरना दागड़ी धर्म धृतांग दागड़ी थेम धरना ताकृति धर्म धृतांग ताकृति देम देना तत्र दानी।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दे पावन पवित्र वचन, जो कि बहुत ही अगम्मी रबी विचार है, सानू महाराज जी के शब्द द्वारा सुन का एक मौका प्राप्त होया। जो आप जी की सेवा च गुरु महाराज जी का महान सिख्या भरिया उपदेश दास ने अर्ज करना है, उसके वास्ते मेरी प्रबंधक सज्जना नूं पहले ही बेनती है कि जो पिछों बच्चों की आवाज आती है उसका सही इंतजाम करन, ताकि उस थॉट प्रोसैस के विच जुड़ी हुई संगत नूं किसी भी किस्म की कोई जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो। आप जी ने इस शब्द की जो थीमैटिक लाइन है वो बार बार सुनी है, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठिन। सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी महाराज सानू साडे जीवन दे विच्चों कोई अजेही चीज छोड़ देण नूं आख रहे हन, जो कि सानू सब तो ज्यादा प्यारी है। कोई अजेही चीज छोड़न नूं आख रहे हन जो कि साडी जिंदगी दे विच तमाम